0: शरीन एंड कैसे चल रही है आपकी शाम। के फॉर किशोर आज के शो की थीम है। एंड मैं ये कह रहा था कि रूप तेरा मस्ताना ये जो गाना है, ये गाना सुनो तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद मतलब राजेश खन्ना के बाद जब हिंदी सिनेमा में एंग्री यंग मैन यानी अमिताभ बच्चन का दौर आया तो किशोर दा ने अपनी आवाज़ का वजन बदल दिया। अमिताभ की कड़क और भारी आवाज़ के लिए किशोर दा ने अपनी आवाज़ को एक अलग ही बेस दिया। खई के पान बनारस वाला या फिर छूकर मेरे मन को, हर गाने में अमिताभ के चेहरे पर किशोर दा की आवाज़ बिल्कुल फिट बैठती थी। मतलब ये भी कॉम्बिनेशन ऐसा है, राजेश खन्ना एंड किशोर कुमार, अमिताभ बच्चन एंड किशोर कुमार, ये कॉम्बिनेशन फिर से बनने वाला नहीं है। क्या ही वो दौर रहा होगा और क्या मज़ा आता होगा काम करने में।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा।

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

मतलब किशोर दा के बारे में जितनी भी बात की जाए वो कम ही है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। किशोर दा जितने बड़े कलाकार थे उतने ही मज़ेदार इंसान थे। उनके घर के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था किशोर कुमार से सावधान। जी हाँ, ऐसे लिखा था। और एक बार एक डायरेक्टर उन्हें बिना पैसे दिए काम करवाना चाहते थे तो किशोर दा ने सेट पर आकर आधे चेहरे पर मेकअप लगाया और आधे पर नहीं। जब डायरेक्टर ने पूछा तो बोले आधा पैसा तो आधा मेकअप। मतलब मैंने एक किसी इंटरव्यू में देखा भी था, सुना था कि किशोर दा जो है उनका कहना था कि जो भी लोग अपना काम करते हैं ईमानदारी से करते हैं, अच्छे से करते हैं, एफर्ट डालते हैं, तो उनको वो काम के पैसे डेफिनेटली मिलने चाहिए। और किशोर दा का ये रूल बड़ा स्ट्रिक्ट था कि पैसे के मामले में वो बड़े स्ट्रिक्ट थे और रहना भी चाहिए। सुनते हैं अगला ये गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड आज बातें हो रही है सिर्फ और सिर्फ किशोर दा की। के फॉर किशोर आज की शो की ये थीम है। यार आज का दिन बहुत ही बेहतरीन है एंड ब्यूटीफुल है, वाकई में सुरीला तो है ही। ऐसा कहा जाता है कि किसी क्रिकेट टीम के पास एक अच्छा ऑलराउंडर रहता है जो बॉलिंग भी करे बैटिंग भी करे तो वो टीम का जीतने का जो प्रमाण है वो बढ़ जाता है। जी हाँ, तो किशोर दा भी म्यूजिक इंडस्ट्री के ऑलराउंडर माने जाते थे। जी हाँ, वो एक बेहतरीन अभिनेता थे, कमाल के निर्देशक थे, लेखक थे और संगीतकार भी थे। फिल्म चलती का नाम गाड़ी में उनकी कॉमेडी देखकर आज भी लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। एक ऐसा इंसान जो कैमरे के पीछे उतना ही माहिर था जितना ही माहिर कैमरे के सामने भी था। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का।

0: एक और जोड़ी के बारे में बात करना चाहूंगा जिनके बिना 70s और 80s का दशक अधूरा है। किशोर कुमार और राहुल देव बर्मन यानी पंचमदा, ये दोनों जब भी स्टूडियो में मिलते थे तो संगीत नहीं बनता था बल्कि जादू होता था। कहा जाता था कि ये बहुत ग्रेट जादूगर थे। दोनों ने घंटों बैठकर अजीब गरीब आवाज़ें निकाली है एंड बर्तनों को बजाकर धुन इन्होंने तैयार करी है। मुसाफिर हूँ यारो जैसे गानों का जन्म इस पागलपन से ही हुआ था। मतलब क्या दौर रहा होगा और किस प्रकार की क्रिएटिविटी रही होगी। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 411.9 एफएम 1490 एएम रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा

किशोर कुमार, इनका बर्थडे, हम एंजॉय कर रहे हैं किशोर कुमार की बातें, किशोर कुमार के किस्से। एंड मैं ये कह रहा था कि किशोर दा के सुर अब थोड़े संजीदा हो रहे हैं। पूरी दुनिया को हंसाने वाला इंसान ये अंदर से बहुत अकेला था। वो अक्सर कहते थे कि उनकी कोई दोस्त नहीं है और वो अपने घर के घर में पेड़ों से बातें करते हैं। शायद इसी अकेलेपन ने उन्हें वो गहराई दी जिसने चिंगारी कोई भड़के और कोई होता जिसको अपना जैसे दर्द भरे गाने गाए। मतलब ऐसा था जो इंसान दूसरों को इतना हंसाता था, जो इंसान हमेशा खुश रहता था, वो अंदर से काफ़ी अकेला था, ऐसा कहा जाता है। एंड उस अकेलेपन से ही शायद संगीत निकलता हो, ऐसा बहुत लोगों का मानना था। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM, HD4 101.9 FM, 1490 AM रेडियो नायरा।

जी हाँ, हमने बात करी कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि किशोर कुमार दा के अकेलेपन से ही ऐसा म्यूजिक जो है वो निकलता था। किशोर दा ने गानों में जिंदगी का एक बहुत बड़ा फलसफा और एक सीख दी है सबको। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। इन सीधी लाइनों को उन्होंने अपनी आवाज़ से जो रूप दिया था वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी अलग था। वो हमें सिखा गए कि उतार चढ़ाव चाहे जितने भी हो, जिंदगी का नाम ही चलते रहना है। मतलब क्या फिलॉसफी थी और क्या उनके विचार थे, ये विचारों को संगीत में बदल देना और उसके बाद उनको अपनी आवाज़ से सजाना, ये वाकई में काफ़ी एक क्रिएटिविटी का काम था जो किशोर दा ने वाकई में बहुत अच्छे से किया है। एंजॉय करते हैं अगला ये गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का दिल।

एंजॉय किया आपने गाना, गाना था वाकई में काफ़ी बेहतरीन। आज बातें चल रही है सिर्फ और सिर्फ किशोर कुमार दा की। क्या आपने कभी ऐसा कोई गाना सुना है जिसमें लड़का और लड़की दोनों की आवाज़ एक ही सिंगर ने निकाली है? जी हाँ, फिल्म हाफ टिकट का वो ये गाना है, शायद आपको याद होगा, आके सीधी लगे दिल पे जैसे कटरिया। इस गाने में लता मंगेशकर जी को गाना था लेकिन वो अवेलेबल नहीं थे, तो किशोर दा ने खुद ही लड़के की आवाज़ भी निकाली, जो तो वो निकालते ही थे, और लड़की की पतली आवाज़ में भी गाया। ये किशोर दा ही कर सकते हैं। मतलब अगर फीमेल सिंगर अवेलेबल नहीं है तो उनकी गायकी भी करना, क्या क्रिएटिविटी है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा।

और छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव मॉरिसविल, कॉल करें 9842540111। रचा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

आपने एंजॉय किया ये गाना एंड किशोर दा की हम बातें कर रहे हैं। किशोर दा ने सिर्फ रोमांस और मस्ती के ही गाने नहीं गाए, बल्कि जब देश की बात आई तो उनकी आवाज़ ने हर हिंदुस्तानी के दिल में देशभक्ति का जज्बा जगा दिया। मेरे देश की धरती की तरह, मतलब मेरे देश की धरती, ये गाना जो उन्होंने गाया था, क्या ही बताओ मैं। उन्होंने मेरे देश की धरती की तरह ही कई फिल्मों में मिट्टी की सौंधी खुशबू को अपने सुरों में पिरोया। विदेश में भी जो लोग रह रहे हैं उनके लिए देशभक्ति क्या होती है ये बताया। कितने लोग तो विदेश में भी, जो हमारे भारतीय लोग विदेश में गए हैं, वो किशोर दा के देशभक्ति से भरपूर गाने सुनकर, मतलब कितनी यादें रहती है यार, मतलब प्यार है, मोहब्बत है, क्रिएटिविटी है, एग्रेशन है, सब है, एक दर्द भी है और देशभक्ति भी है, मतलब क्या रह गया। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का।

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करे 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड के फॉर किशोर हमारे शो की आज थीम है, क्योंकि किशोर कुमार का है बर्थडे। मैं यही कह रहा था कि आप भी मुझे बता सकते हैं कि आपको किशोर कुमार का कौन सा गाना पसंद है, एंड कितने सारे गाने, क्लासिकल गाने भी किशोर दा ने गाए हैं। मतलब क्लासिकल की ट्रेनिंग नहीं, एंड क्लासिकल गाने गाना, ये कितना बड़ा टास्क जो है वो रह चुका होगा किशोर दा के लिए। यू नो लाइक एक क्रिएटिव इंसान क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है। चाहो तो आदमी, एक आदमी बहुत चीज़ें भी कर सकता है, ये किशोर दा ने बताया है। किशोर दा का आपको कौन सा गाना पसंद है आप मुझे बता सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि वो आपका फेवरेट गाना मैं ऑन एयर प्ले कर पाऊँ। फटाफट आप मुझे बताइए। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा।

वेलकम बैक। एंजॉय किया आपने गाना एंड रेडियो नायरा सेलिब्रेट कर रहा है किशोर दा का बर्थडे। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्मला नाइट्स, जहां मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ किशोर दा के बारे में। किशोर दा के बारे में मैं जितना भी कहूँ उतना कम है। मतलब मैं कहूँगा ना यार, किशोर दा के बारे में मुझे बात करनी है तो मुझे बहुत शो एक साथ करने होंगे, तभी जाके सारी बातें जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। कितना कहूँ किशोर कुमार दा के बारे में, कितने गाने हैं। एंड किशोर कुमार दा का गाना ऐसा है ही नहीं कि आप सुन रहे हैं और आपने गाना बंद कर दिया या फिर दूसरा गाना चला दिया। गाना जब तक पूरा नहीं होता है तब तक पॉज का बटन तो हमसे होता ही नहीं है लगाना। सो इट्स लाइक ये है मैजिक एक म्यूज़िक की, और वो टाइम में रिकॉर्डिंग तो क्या होती थी। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का देसी।

0: घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि अब रात के 10 बजने वाले हैं और हमारे ये बेहद खूबसूरत शो का जो है वो किशोर कुमार का हमने आज थीम रखा था के फॉर किशोर, वो जल्द ही ख़त्म होने वाला है। किशोर कुमार दा के जन्मदिन पर हमने उनके जीवन के कई रंग देखे, हंसी, मजाक, रोमांस और थोड़ा सा अकेलापन। किशोर दा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो अपनी आवाज़ के ज़रिए हमेशा हमेशा उनके गाने जो है याद रहेंगे। चाहे आप खुश रहोगे, उदास होगे, प्यार में होगे, तो किशोर कुमार दा को हमेशा आपके साथ पाओगे। जाने से पहले उनका सबसे खूबसूरत विदाई गीत छोड़ रहा हूँ, चलते चलते उनके ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। किशोर दा आपके दिल में हमेशा रहते हैं और रहेंगे। गुड नाइट।
1: आप सुन रहे हैं WCMC-FM Holly Springs 99.9 FM HD4 W270 DT Durham 101.9 FM WDUR Durham 14

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

हो जाए कब तो प्यार दो प्यार दो और बेचैन दिल करके हो जाए।

ती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हमशक्ल।

0: मैं दगड़ू हुई गुंड इंटरपोल से, जो सबसे गंदा फुगड़ी खेलेगा वही किलर होगा। आओ फुगड़ी डांस करे।
1: ओ भाई फू फुगड़ी फू, यू लाइक मी एंड आई लाइक यू टू। ओ भाई फू फुगड़ी फू, यू लाइक मी एंड आई लाइक यू टू। ओ भाई फू फुगड़ी फू, यू लाइक।

0: छोड़ा आड़े रॉकेट गए फुल जड़ी से तूने भरेले पॉकेट। अरे बारा बन मेरे जैसा बन, ये ले नाना का बॉम्ब जाके उड़ा दे घर।
1: Fugadi Poo, you like me and I like you too. Oh, bye, Poo, Fugadi Poo, you like me.

0: रेडियो नायरा पर आप सुन रहे हैं गीतांजलि।
1: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

0: हेल्दी लिविंग मीन्स इंडियन ट्रेडिशन। सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा।
1: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna & Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 karat gold and 18 karat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come see us for all your jewelry needs at Khanna & Sons Jewelers in Cary, North Carolina, or call us at 9193883.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
3: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी, पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्यूल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लो।

0: हेल्दी लिविंग मीन्स इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: आप सुन रहे हैं नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 440 90 AM, पक्का देसी पक्का लोकल.

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

0: and Sanvi Meghana all performing live in one spectacular show. Mark your calendars, Sunday, August 9th in Raleigh, North Carolina. Bring your family, bring your friends and be part of the biggest Pan India dance celebration of the year. Don't miss Prabhudeva live in Raleigh.
1: Presented by Fusion Vibes and Lime and Lemon Indian Grill. Media partner Radio Naira, your Indian community media network.
0: Prabhudeva live Sunday, August 9th in Raleigh, North Carolina. One legend, one stage, one unforgettable night.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.
3: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM. पक्का देसी, पक्का लोका.

0: साल की शुरुआत सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स के साथ. ट्यून इन टू रेडियो नायरा 2025 की परफेक्ट शुरुआत.
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स.
2: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा.
1: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
2: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना,
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल। आप सुन रहे हैं नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: Discover wellness through the richness of Indian traditions. Stay tuned to Healthy Rehne Ke Liye Musical Parampara on Radio Naira.
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स।
2: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा,
1: एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स।
2: प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
3: Radio Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi, Pakka Local.

0: नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।
1: नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोका।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल। आप सुन रहे हैं नहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

WMCFM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

0: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna & Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 karat gold and 18 karat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come, see us for all your jewelry needs at Khanna & Sons Jewelers in Cary, North Carolina or call us at 919-388-3883.
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

सदियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

0: सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक, प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi, Pakka Loka.

to WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

0: हेल्दी लिविंग मीन्स इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: नॉर्थ कैरोलिना, द वेट इज फाइनली ओवर.
2: द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ डांस, इंडियाज लेजेंडरी प्रभु देवा इज कमिंग लाइव टू रैली. Experience an unforgettable night of spectacular dance, breathtaking performances, blockbuster music, over 100 phenomenal dancers, celebrity appearances, viral hits in Tamil, Telugu and Hindi, and non-stop entertainment.
3: Witness the phenomenon, the passion and the magic of India's greatest dance icon alongside

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्यूल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 49 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: साल की शुरुआत सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स के साथ। ट्यून इन टू रेडियो नायरा 2025 की परफेक्ट शुरुआत।
1: आप सुन रहे हैं नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।
1: आप सुन रहे हैं नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 41490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

Laudi, laudi.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

जब यूट्यूब नहीं था, नेटफ्लिक्स नहीं था, इंस्टाग्राम रील्स नहीं थी, और एंटरटेनमेंट का मतलब था चित्रहार, सुपरहिट मुकाबला, शक्तिमान, जंगल बुक और संडे को महाभारत या रामायण देखने के लिए पूरा शहर, पूरी गलियां सन्नाटे भर जाते थे। अगर याद हो आपके तो वो टीवी का रिमोट एक ही होता था और उसका परमानेंट ओनर होते थे पिताजी। उस जमाने में बफरिंग सिर्फ तब होती थी जब एंटीना हवा में हिल जाता था और वाईफाई पासवर्ड नहीं पूछा जाता था। एनीवेज, ये सब चीज़ें छोड़ते हैं, बात सिंपल है कि बॉस आज हम बात करने वाले हैं 90s की। हम देखना ये चाहते हैं कि आप कितने ट्रू 90s के हैं, हम देखेंगे आप कितने पक्के 90s के फैन हैं। हम बजाएंगे पुराने टीवी कमर्शियल्स के जिंगल्स, फेमस बॉलीवुड डायलॉग्स, छोटी सी ट्यून या बैकग्राउंड म्यूजिक या कुछ भी रैंडम 90s वाली चीज़ें या कुछ भी फिलोसफिकल बातें, और आपको बस पहचानना है या सवालों के जवाब देना है। और सबसे एक्साइटिंग बात क्या है, क्यों क्योंकि आज के शो में दो लक्की कॉलर्स जीतेंगे एक एक टिकट हमारे लेजेंडरी डांसर एंटरटेनर प्रभु देवा के लाइव शो की, जो कि होने वाला है 9 अगस्त को रैले मेमोरियल हॉल में 5 से 6 बजे। तो जी हाँ, सिर्फ दो, अच्छा ऐसे भी क्या बात है, ठीक है, बहुत टिकट है हमारे पास, हम 3 कर देते हैं। जो 3 लकी विनर्स होंगे, जी हाँ 3 लकी विनर्स, उनके लिए एक एक सबको एक टिकट मिलेगा। तो इसलिए फोन अपने पास रखिए, ध्यान से सुनिए, और जैसे ही मैं कुछ ट्यून बजाऊं, कुछ करूं, तो आप तुरंत फोन करिए, हो सकता है अगले विनर आप ही हो। और हाँ, चीटिंग बिल्कुल मत करिएगा, गूगल को थोड़ी देर साइड में रख दीजिए, असली टेस्ट है आपकी यादों का, चाहे सही है गलत है आसपास है कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है वहां से कहां से तिनके जुड़ते जाते हैं। तो देखते हैं 90 से सिर्फ आपने देखा है या उसे दिल से जिया है। तैयार हो जाइए नॉस्टैल्जिया की इस म्यूजिकल टाइम मशीन में बैठने के लिए। आज हम सिर्फ गाने नहीं सुनेंगे, हम उन यादों को दोबारा जिएंगे जो शायद कहीं दिल के किसी कोने में आज भी संभाल के रखी हुई हैं, छुपी हुई हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, फैमिली को भी बुला लीजिए, और अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो सेफ ड्राइव कीजिए, क्योंकि किसी न किसी के लिए तो आप इम्पॉर्टेंट हैं। मैं हूँ अर्पित और आप सुन रहे हैं इधर उधर की बातें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पहले चैलेंज के साथ, देखते हैं पहला सवाल कौन क्रैक करता है। अरे नंबर तो दिया नहीं मैंने, नंबर है 9199998595। तो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ हमारी तकनीकियाँ इस चीज को आसान बना दें, एंड लेट्स हियर दिस थिंग।

ऑलराइट, तो आपको क्या करना है, ये जो गाना है इसके अंदर एक एक्टर है, उस एक्टर के बगल के अंदर एक साइड एक्टर है, उसकी पहला एड जो था उसने कौन सा करा था? अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है, आप बस मुझे बताइए फोन करके कि किस मूवी का गाना है, कौन हीरो हीरोइन है, कुछ भी बताइए। ये तो बहुत ही क्लासिक गाना था अपने टाइम का, लाइक कितने महीनों तक टॉप पे रहा था, तो आई एम श्योर काफी लोगों को पता है, जिनको सुनते ही आ गया होगा याद। तो नंबर है 919-999-8595, नंबर घुमाइए और बताइए, एंड आपको मिल सकता है, आप लकी हो सकते हैं, प्रभु देवा के शो की एक टिकट आपके नाम हो सकती है। पढ़ते हैं एक घटिया से, नहीं नहीं अच्छे गाने की तरफ, वेल जरूरी नहीं है हर गाने अच्छे हो यार, कई बार होते हैं ये गाने बस गाने होते हैं, वो किसी यादों से अटैच होते हैं, नॉट नेसेसरी हर एक के लिए अच्छे हों, तो मुझे नहीं कहना चाहिए कि बढ़ते हैं एक अच्छे से गाने के लिए, बस गाना आ रहा है सुनिए एंजॉय करिए। वेल एक्चुअली ये तो अच्छा गाना है क्योंकि मेरे शहर का गाना है।

0: सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: वेलकम बैक, मैं हूं अर्पित और आप सुन रहे हैं इधर उधर की बातें। एंड यार, किसी का फोन नहीं आया, पिक्चर देखी नहीं है क्या? वेल, सिर्फ एक मुझे मैसेज आया, बट भाई हमारे उसूल है, हमारे रस्में हैं, हम मान नहीं सकते अगर मैसेज आता है तो। बट एनीवेज, मैसेज आया तो किसी ने तो मूवी देखी है, एंड द राइट आंसर ऑफ कोर्स इज बाजीगर नहीं है, अंजाम। भाई क्या डेडली मूवी थी, फर्स्ट ऑफ ऑल यार, 3 घंटे की उस टाइम पे, उस जमाने में 1994 में ऑलमोस्ट 3 घंटे की मूवी। अगर आपको याद हो, आपके घर में अगर VCR था या आप कहीं से लेके आते थे, फिर आप कैसेट की दुकान ढूंढते थे, तो जनरली यूजली मूवी जो आती थी एक कैसेट में आती थी। ये मूवी थी जो 2 कैसेट में आती थी। भाई हमने लगाई, पहली कैसेट हमने देखी, दूसरी कैसेट थोड़ी खराब निकली, उस चक्कर के अंदर मैं इसका सेकंड पार्ट देख ही नहीं पाया, तो मैंने आज तक देख ही नहीं सेंसा। पहला ही पार्ट देखा है मैंने, सेकंड पार्ट मैंने कहा कौन जाए दोबारा उससे लड़े, धूप में जाके दूसरा कैसेट लेके आया। बट एनीवेज, सो दैट वाज इट। एंड जिन लोगों ने अभी ज्वाइन करा है उनको मैं बता दूं कि आज हम थोड़ा बहुत ट्रिविया विया टाइप का खेलेंगे, क्वेश्चन वोश्चन पूछेंगे, कहानियां वहानियां सुनाएंगे, आपकी भी सुनेंगे, और जो 3 लकी कॉलर्स होंगे आज के, उनको उनको उनको मिलेंगी प्रभु देवा साहब की, जो आ रहे हैं इस संडे को 9 अगस्त को रैली मेमोरियल में, उनकी शो की टिकट, 3 लकी विनर्स, एक एक टिकट मिलेगी सबको। तो फोन करिए और आंसर दीजिए, अपनी कहानियां सुनाइए, बातें करिए, मजा आएगा। नंबर है 9199998595। बढ़ते हैं अगले ट्रिविया की तरफ। वेल, ये यार पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि ये वो चीज है जो आई एम प्रीटी श्योर लड़कों को तो एकदम से क्लिक करेगा, उनके दिमाग के अंदर एक पर्टिकुलर न्यूरॉन होगा जो स्पार्क करेगा, अरे ड्यूड ये ट्यून क्या गजब था यार। मैं ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ लड़के लड़कियों के अंदर, बट हाँ, दिस इज मोर अबाउट गाय थिंग, शायद आई कुड बी रॉन्ग, बट लेट्स हियर इट, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे।

0: I forgive my boss. I forgive the government.
1: All right. तो मुझे नहीं पता कितने लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन डूड आई फर्स्ट ऑफ ऑल ये एड अमेजिंग था, मुझे सही लगता था, और जो म्यूज़िक है इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक क्या अमेजिंग लगता था मुझे। बाद में मैंने आके ढूंढा कि किसी अफ्रीकन पॉप सिंगर है उनका एल्बम था, वहाँ से इन्होंने गाना इंस्पायर करके यही लिया था। बट एनीवेज फटाफट मुझे बताइए कि ये किस चीज़ का एड था। नंबर है 9199998595। कहीं लद्दाख ना चले जाएं आप लोग, हिंट पे हिंट दे दिए मैंने।
2: अंश, अंश जल्दी आ, क्या हुआ? अरे जल्दी आना, ये देख ये तेरा एक्स है ना, इसका नया वीडियो आया है।

0: Stations, Harini Neelakantan, Natasha Sherpa, Sonali Badauria, Alexander Noel and Sanvi Meghana, all performing live in one spectacular show. Mark your calendars, Sunday, August 9th in Raleigh, North Carolina. Bring your family, bring your friends and be part of the biggest Pan India dance celebration of the year. Don't miss Prabhudeva live in Raleigh.
1: Presented by Fusion Vibes and Lime and Lemon Indian Grill. Media partner Radio Naira, your Indian community media network.
0: Prabhudeva live Sunday, August 9th in Raleigh, North Carolina. One legend, one stage, one unforgettable night.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.
3: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM. पक्का देसी, पक्का लोकल. सुनते रहिए.
4: भाई क्या बात है, फोन नहीं आ रहे, लाइन ही चल रही है मेरी. बट एनीवेज, लाइनों का पता नहीं, लेकिन हाँ डेटा प्लान तो चल रहा है क्योंकि मुझे मैसेज जरूर आ रहा है. एनीवेज, तो जो लास्ट मैंने बजाया था ट्यून, वो था बजाज एवेंजर का. क्या यार ऐड था, अगर याद हो आपको तो. क्या मस्त है, लाइक यू नो, लाइक लड़का निकल पड़ा है. आई थिंक दैट्स हाउ द लद्दाख थिंग स्टार्टेड, कि आप निकल पड़े हो. एक तो उसका बैकपैक भी नहीं था, वो टी शर्ट के अंदर सिर्फ हेलमेट पहन के अपनी आधी कटी हुई मूछें लेके वो जा रहा है. एंड ही इज फीलिंग लाइक गॉड. क्या तो फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूजिक क्या अमेजिंग था. बाइक तो मुझे ऐसी लगती थी. अगर याद हो उसी टाइम पे उसके कंपटीशन में यामाहा ने एक एंटाइसर भी निकाली थी, विच वॉज काइंड ऑफ प्रिटी मच सेम काइंड ऑफ क्रूज बाइक, यू नो, आप आराम से पीछे बैठो चलाओ. लेकिन इसका जो एड था ना, दैट वॉज अमेजिंग, मुझे बहुत सही लगता था. वेल एनीवेज, जिन्होंने अभी ज्वाइन करा है, मैं फिर से बता दूं कि आज के जो 3 लकी विनर्स होंगे, जो मुझे कॉल करेंगे, उसमें से विल फाइंड रैंडमली फाइंड 3 लकी विनर्स. उनको मिलेगा प्रभु देवा के शो की टिकट, हर एक को एक एक टिकट, जो कि होने वाला है कमिंग संडे 9 अगस्त को फ्रॉम 5 to 6 PM रैले मेमोरियल ऑडिटोरियम के अंदर. वेल, इतनी इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत थी नहीं मुझे, क्योंकि आई एम श्योर पूरे टाउन में बज है कि प्रभु देवा साहब आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं. तो जिन्होंने टिकट खरीद लिया, वेरी गुड. जिन्होंने नहीं खरीदी है, तो भाई आपके पास चांस है, फ़ोन करें एंड बातें करें हमसे, एंड यू माइट बी लकी, यू विल गेट वन टिकट. वेल, आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले मुझे ना एक पशपेक्ष था, नॉट दुविधा थी, बट हाँ आई वाज जस्ट थिंकिंग दिस थिंग, कि यार लोग कहते हैं, बल्कि हमारे टाइम पे भी अभी भी कहते थे ना, बुक्स पढ़ो, किताबें पढ़ो, ये जिंदगी बदल देती है. और मैं सोच रहा हूँ सही में, लाइक बुक्स आप पढ़ रहे हो या आप टीवी देखो, दैट्स कैन ऑफ सेम थिंग ना, इन्फॉर्मेशन टीवी से भी आ रही है. लेकिन पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं टीवी मत देखो, टीवी नहीं आंखें खराब हो जाएंगी, पढ़ाई कर लो. भाई मुझे लगता है, मैंने जो ऑब्जर्व कर रहा है, सबसे ज़्यादा चश्मे जो बुक रीडर्स होते हैं उन्हीं को लगे होते हैं, जिनकी टीवी देख रहे हैं उनको ही नहीं लग रहे होते चश्मे इतने. तो वो लॉजिक तो नहीं है इतना. तो जो इन्फॉर्मेशन आपको बुक से मिल रही है, अगर आप सही चीज़ें देख रहे हो, तो वो आपको टीवी से भी मिल रही है, मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज, वेब सीरीज, कुछ भी है. अगर आप फिक्शन, नॉन फिक्शन पढ़ रहे हो बुक्स के अंदर, तो नॉन फिक्शन तो टीवी में भी है एक्चुअली, ज़्यादा है. तो क्यों क्यों बुक्स को क्यों इतना महत्व दिया जाता है? क्या ये पुराना वो है काइंड ऑफ, यू नो, लाइक पुराने दशक का था, मिसाल की हाँ बुक्स पढ़नी

ऑलराइट, ये तो या काफी सिंपल होना चाहिए, बहुत बढ़िया गाना है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट है और मैंने कितनी बार बजाया भी है। तो चलिए फोन करिए, बताइए नंबर 9199998595। तब तक बढ़ते हैं एक बढ़िया से गाने की बात, एक्चुअली बढ़िया ही गाना है, इट्स नॉट बैड सॉन्ग, तो चलिए सुनते हैं इस गाने को।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: हेल्दी लिविंग मीन्स इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. पक्का देसी पक्का लोकल.
2: वेलकम बैक. मैं हूं अर्पित और आप सुन रहे हैं इधर उधर की बातें. एंड आई थिंक समहाउ तकनीकी खराबी है हमारी फ़ोन की लाइनों में, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ, वेल क्वेश्चंस तो नहीं है, जो भी है यार, इनके आंसर आ जाने चाहिए थे, बस मुझे मैसेज आ रहे हैं तो समहाउ फ़ोन की लाइन हमारी कनेक्ट नहीं कर पा रही है. ये मैं अपने आप को दिल को दिलासा दे रहा हूँ, बट आई एम होपिंग लोग सुन रहे हैं क्योंकि मुझे मैसेज ज़रूर आ रहे हैं. तो जी हाँ, जो मैंने सुनाया गाना वो था, कौन सा सुनाया था मैंने, हो गई है मोहब्बत हमसे. क्या गाना है यार, क्या गाना है भाई, मुझे बहुत पसंद था ये गाना. एक तो वो जो बैकड्रॉप दिखाया ना केरला के बैक वाटर्स का, अरे क्या अमेजिंग है. और अगर आपको याद हो उसके अंदर जो नकुल कपूर साहब है, उन्होंने इसके अंदर वो एक्ट करा है इन्होंने. उस इसके बाद उनकी एक मूवी आई, क्योंकि ये ना बहुत फेमस हो गए थे अपने गुड लुक्स के चक्कर में, तो उनकी मूवी आई थी तुमसे अच्छा कौन है. पिक्चर आई थी वो हिट हुई थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही मूवी करी एंड उन्होंने चले गए कैनेडा, वहाँ जाके उन्होंने योगा स्टूडियो खोल लिया. सही होता है ना यार, लाइक कुछ लोग होते हैं कि एक आध पिक्चर हिट करी एंड दे आर लाइक यार ये हमारे मन का नहीं है, हम जा रहे हैं. लाइक आई थिंक सेम थिंग हैपेंड विद अरविंद स्वामी साहब, उनकी पिक्चरें क्या हिट थी, 10-12 उन्होंने हिट पिक्चरें दी एंड दे आर लाइक यार दैट्स ओके, मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं करनी पिक्चरें, ये इंडस्ट्री में समझ में नहीं आ रही है. और क्या कम बैक करिए यार, क्या मूवीज कर रहे हैं, क्या एक्टिंग है यार, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार उनके, उनको देख के ना बड़ा अच्छी फीलिंग आती है, कम्फर्ट वाली फीलिंग. और जब वो विलन वाले एक्टिंग करते हैं, ओफो वो तो आप प्रिडिक्ट नहीं होता ना उनसे कि वो भी ऐसा कर सकते हैं. बट एनी वेज मूविंग बैक, तो अगेन मैं बता दूँ, हाँ एक स्टोरी मैं सुनाना चाहूँगा, क्योंकि अभी कुछ हुआ है और ज़रूरी है कि मैं एक स्टोरी सुनाऊँ. यू नो आपके 12th क्लास के अंदर वाइवाज होते थे, जो जिन्होंने साइंस स्ट्रीम ली होगी, अरे वही वाइवा जिसके अंदर लड़कियां कन्फ्यूज होती हैं, बिल्कुल नर्वस हो जाती हैं लेने से देने से पहले, एंड जो लड़के होते हैं वो बिल्कुल चौड़ में होते हैं, कहते हैं अरे हम लोग फोड़ देंगे, अंदर जाके 0 मार्क्स लेके आ रहे होते हैं, वो चीज़. तो हमारा केमिस्ट्री का वाइवा था, हम मम्मी पापा ने मुझे ना रोद होके, लाइक मैं बहुत रोया धोया था, वो भी रोई धो रहे थे, तो उन्होंने मुझे कंप्यूटर दिलाया विद प्रिंटर और मैंने मस्त रिपोर्ट बनाई, लाइक वाइवा की कुछ नहीं एक्सपेरिमेंट, मुझे कुछ पता ही नहीं करना है क्या था, पिछले किसी सीनियर साल के सीनियर ने रिपोर्ट बनाई थी तो मैंने भी वो छाप दी. सेम चीज मैं जेरोक्स करा सकता था, लेकिन आई वाज लाइक नहीं प्रिंटर है, प्रिंटर प्रिंट करेंगे, तो अच्छे अच्छे फॉन्ट्स डाल के कलर करके मैंने बना दी. कोई तो एक्सपेरिमेंट था कि डिफरेंट टीज और उसके अंदर कुछ कलर चेंजेस होते हैं, पता नहीं क्या था, तो बस एनीवेज आई डिड दैट. वाइवा हुआ, एक्सटर्नल आके बैठ गई हमारी, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछिए हम उनके, एक सवाल में दो जवाब, सवाल एक जवाब, दो सवाल जवाब, बस चल रहा मेरा. फिर मैडम ने आखिरी सवाल पूछा एंड दैट वाज अ फॉर्मेलिटी. ऐसा होता है ना कि यार मैडम तो बिल्कुल इंप्रेस्ड हैं, दे वाला कि चलो चलते चलते बेटा ये दही खा लो, इस टाइप का क्वेश्चन उन्होंने उससे पूछा कि व्हाट इज द मेन कंपोनेंट इंग्रेडिएंट इन टी. आई वाज लाइक अरे मैम, एंड मैं भूल गया क्या, मुझे पता ही नहीं था, मैं रैंडम बोल रहा हूं. मैडम ये शक्ल देखी क्या, उन्होंने मेरी जो रिपोर्ट जो मैंने बनाई थी बड़ी अतरंगी सुंदर सी, उन्होंने मेरी तरफ करी, ये पढ़ो देखो, और मैं पढ़ रहा हूं यार, मुश्किल से 10-12 सेंटेंसेस लिखे हुए उसके अंदर, आई हैड इनफ टाइम, मैं फिगर आउट नहीं कर पाया कि मेन कंपोनेंट क्या है. मैम ने कहा तुमने ही करे ना एक्सपेरिमेंट, मैंने कहा मैम क्या बोल सकते हैं. उन्होंने उंगली दिखाई करा, ये देखो ये तुमने अलग से बड़े 20 फॉन्ट साइज में कैफीन लिखा हुआ है, जिसका कलर भी अलग है, तुम्हें दिख नहीं रहा है. द सेम थिंग, वही मुझे इंसिडेंट याद आ गया, क्योंकि आज जब मैंने बोला कि प्रभुदेवा साहब का शो हो रहा है 5 से 6, तो मुझे सोचना चाहिए था, डूड 1 घंटे का शो नहीं है, 5 बजे से सेटिंग है, 6 बजे से शो स्टार्ट होगा, 3 घंटे का नॉन स्टॉप. तो गलती सुधारने में भी मैंने कहानी सुना दी है, बट एनी वेज तो जिन्होंने अभी ज्वाइन करा है तो आप मुझे कॉल करिए, और जो 3 लकी विनर्स होंगे आज के कॉलर्स, उनको मिलेगी प्रभु देवा शो साहब के शो की लाइव टिकट के. वाह बहुत मुश्किल है डूड इतना कुछ करना मेरे लिए, कि मैं गाने भी चलाऊं, मैं बात भी करूं, मैं ये मेमो भी पढूं और अगले गाने की तैयारी भी करूं. एनीवेज तो जो कॉलर्स होंगे आज, उनमें से हम 3 लकी विनर्स चूज करेंगे और उन सबको एक एक टिकट मिलेगा प्रभुदेवा साहब के शो की जो कि होने वाला है कमिंग संडे। तो फोन घुमाइए, नंबर है 9199998595। और अगला जो मैं ट्रिविया चलाने वाला हूँ, डूड ये तो चलो उसका आंसर भी मत देना, आई एम जस्ट होपिंग कि इससे आपको ना आपके जो पुराने यादें हैं ना वो एकदम तरोताज़ा हो जाए, क्योंकि ये गाना, ये जो ट्यून थी उस टाइम पे हमारा करता था भाई क्या है यार ये बंद करो, और अब ऐसा है कि बॉस यार क्या जमाना था यार वो। तो चलिए आपके जो दिमाग है उसको पुरानी 90s गलियों में लेके जाते हैं।

क्या लगता है आपको याद है? तो आपको करना यह है कि आपको ये तो बता ही देंगे, लेकिन आपको ये भी बताना है कि इसका रिसेंटली, मैं रिसेंटली तो नहीं है बट हाँ सबको एक ही मूवी ध्यान होगी, किस मूवी के अंदर एक सीन है जहां पे इस चीज को कॉपी करके एक बहुत ही सीनिक लाइक कॉमेडी टाइप का सीन क्रिएट करा गया है। तो चलिए नंबर घुमाइए 9199998595। अब तब तक बढ़ते हैं एक बढ़िया से गाने की तरफ। वेल एक्चुअली ये बढ़िया ही गाना है।

0: वेलकम बैक, मैं हूँ अर्पित और आप सुन रहे हैं इधर उधर की बातें। और मुझे बड़ी खुशी मिल रही है, एक कोई कोई तो आया है 90s की दुनिया से, मुझे जिसने फोन मिलाया है, तो चलिए हम उनसे बातें करते हैं। हेलो
1: अर्पित।
0: हेलो, किससे बात हो रही है मेरी?
1: मैं राहुल बात कर रहा हूँ।
0: राहुल, कैसे हैं आप?
1: मैं मजे में हूँ, आप कैसे हो?
0: बस बढ़िया, आपसे बात हो गई है, मुझे बड़ी खुशी मिल रही है कि कोई तो है जिसको मेरी ट्रिविया समझ में आ रहे हैं, जिसको पता है कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। तो क्या लगता है आपको, जो मैंने ट्यून बजाई है उससे आपको कौन सी यादें याद आ गई है?
1: हाँ, बचपन में वो दूरदर्शन का ट्यून चलती थी, वो दूरदर्शन की, और न्यूज के पहले बजती थी मोस्टली वो
0: जी।
1: तो वो याद आया मुझे।
0: राइट, न्यूज से मुझे याद आया कि उस टाइम पे दो बार चलती थी ना, एक बार हिंदी में न्यूज आती थी ऑलमोस्ट 45 मिनट्स की, और उसके बाद इंग्लिश में आती थी।
1: करेक्ट, इंग्लिश में आती थी।
0: या
1: करेक्ट करेक्ट,
0: और पापा जो होते हैं वो दोनों सुनते थे। मुझे कभी रीजन समझ नहीं आया कि सेम न्यूज है। That's like, ठीक है यार, कुछ होता होगा इंग्लिश के अंदर, कुछ डिफरेंट आता होगा, तो इंग्लिश तो मेरी कमजोर थी, लेकिन मैंने कभी ध्यान से सुना, मैंने सेम चीज तो दिखा रहे हैं, सेम ग्राफिक्स आ रहे हैं, क्या कर रहे हो आप?
1: हाँ, वो सेम पिक्चर्स दिखाते हैं उसे, वो करेक्ट।
0: सब बात हो ही रही है
1: दूरदर्शन, हमें एक बार ही देखना पड़ता था। हाँ, मेरे पापा इंग्लिश इतना एंजॉय नहीं करते थे, तो मैं हिंदी में ही सुनता था एक बार।
0: मुझे तो न्यूज एंजॉय मैं करता ही नहीं था, पापा को था कि नहीं इंग्लिश इंप्रूव होती है एंड ऑल, इज नॉट लाइक कि हम भी वैसे थे, इट जस्ट कि पापा को अच्छा लगता था कि ठीक है इंग्लिश में सुनना चाहिए, तो वो सुनते थे, उस चक्कर के अंदर हम भुगतते थे क्योंकि हमें तो वीसीआर के अंदर मूवी देखनी है। बट तो आपको दूरदर्शन के अंदर कौन सा आपका फेवरेट सीरियल है जो आपको याद है, सबसे घटिया सीरियल जो यू लाइक अरे यार ये क्यों आता है?
1: एक ब्योमकेश बख्शी करके आता
0: था,
1: तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद में मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो आता था।
0: राइट,
1: और बहुत सारे जो है, चंद्रकांता,
0: यक्कू।
1: यक्कू, हमारे एक दोस्त को भी हम यक्कू करके बुलाते थे।
0: अरे उस टाइम पे आई एम श्योर कितने वो यक्कू कितना फेमस हो गया था। उसके बाद जब हम नहा के निकलते थे, बाली मारते थे, तो हम क्रूर सिंह ही लगते थे मम्मी की नजरों में। बिल्कुल बाल ऐसे ही हो जाते थे हमारे।
1: करेक्ट करेक्ट।
0: वेल, आपसे बात करके मुझे बड़ा मजा आया है, एंड जैसा कि आपको पता है कि आज हम थ्री लक्की, अरे आप तो लक्की क्या, मैं लक्की हो गया आपसे बात करके, तो आपको मिलता है वन टिकट, मैं आपको टिकट दूंगा फॉर प्रभु देवा, आप जीतते हैं तो जरूर जाइएगा आप, एंड वी विल कॉन्टेक्ट यू विद मोर डिटेल्स आफ्टर द कॉल, आफ्टर द शो। तो आई होप आप फैन है प्रभु देवा साहब के। वेल, उनका फैन कौन नहीं होगा।
1: हाँ, उनका फैन कौन नहीं होगा, वही।
0: राइट, उनके कौन से पर्टिकुलर गाने हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, बस मुकाबला मुकाबला छोड़ के, क्योंकि वो सबका फेवरेट है।
1: उसके बाद में फिर अभी मेरे को स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं उनका, क्योंकि वही एक मूवी में बहुत सारे
0: आई नो, उर्वशी उर्वशी,
1: हाँ उर्वशी उर्वशी, करेक्ट।
0: उसके
1: बाद में मैं गोरी चोरी हूँ, गोपाला, तुमने हाँ। दिल की नजरिया से क्यों मारा,
0: नाइस, मैं भूल गया था गाना, गोपाला गोपाला,
1: लेके सरा सरा, उसमें तो उन्होंने माधुरी दीक्षित के
0: साथ कमाल कर दिया था, डांस कर रहा है उसमें, दोनों ने क्या डांस कर रहा है।
1: करेक्ट करेक्ट,
0: उसके अंदर एक डांस है जिसके अंदर माधुरी दीक्षित आगे डांस कर रही है, यू नो हॉरिजॉन्टली स्किप कर रही है, और पीछे प्रभु देवा साहब वो हल्की सी फॉरवर्ड मून वॉकिंग कर रहे हैं, क्या सही कोरियोग्राफ कर रहा है, अरे बहुत मजेदार है। रोक दिया आपके लिए, बट ठीक है, बट आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। और कुछ बात करना चाहेंगे आप 90s के दूरदर्शन के बारे में? और कृषि दर्शन याद है आपको?
1: कौन सी?
0: कृषि दर्शन आता था एक,
1: कृषि दर्शन आता था, हाँ
0: वो देखते थे
1: हम, वो इतना नहीं देखते थे हम, महाराष्ट्र में थे तो उधर आमची माती आमची माणसा करके आता था, तो उसका एक वर्जन था वो।
0: ऑलराइट,
1: तो हम वो देखते थे।
0: ठीक,
1: उसमें उसमें एक सेगमेंट आता था जहाँ पे वो गांव में जो लोग रहते हैं वो सब एक साथ आते थे और उसके प्रॉब्लम्स डिस्कस करते थे, तो दे यूज्ड टू ब्रिंग अ फनी एलिमेंट आउट ऑफ दैट, सो वी यूज्ड टू एंजॉय दैट.
0: ओह वाओ, लकी यू, क्योंकि मैं तो मजबूरी में देखता था. आई वॉज लाइक कि कुछ नहीं आ रहा है एंड पढ़ाई नहीं करनी है तो क्या कर सकते हैं, यही देख सकते हैं, तो मैं तो मजबूरी में देखता था. Well, thank you very much for calling. I hope you are enjoying the show and आपको हम information भेजेंगे आपकी ticket की after show.
1: जरूर. All right.
0: Thank you. Bye.
1: Thank you. Bye.
2: 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

तो ये थे हमारे राहुल साहब जो कि जीत गए हैं प्रभु देवा के शो की वन टिकट। तो अब बचती हैं दो टिकटें। एंड हाँ, आप फोन करिए, डिपेंडिंग नाउ अब कितनी कॉल्स आ रही हैं, यू कुड बी लकी और यू कुड बी जस्ट आई कुड बी लकी कि अगर आपने जो फोन कर लिया तो आप बिल्कुल फोन करें। लेकिन फोन आप कब करेंगे? आप तब करेंगे ना जब मैं आपको कुछ मैं क्यू दूंगा। सो चलिए क्यू सुनते हैं कि अगला कौन सा है। लेट्स हियर दिस आउट।

ऑलराइट, मुझे लगता है ना मैं ज्यादा ही सुना दिया, ये सिर्फ फर्स्ट सेकंड दैट शुड हैव बीन गुड इनफ। तो करना क्या है आपको, आपको बताना है कि इस गाने का जो कंपोजर है उनके भतीजे का नाम क्या है। सही में यार मुझे किसी को कोई मुझे रोकना चाहिए, इतने गंदे गंदे जोक्स क्रैक करता हूँ, बट ठीक है आप मुझे बताइए कौन सी मूवी का नाम है, कौन सी मूवी का ये गाना है। फोन है नंबर, अरे वाह मैं तो नंबर से मैं, एनीवेज थोड़ा कंट्रोल करते हैं। फोन नंबर है 9199998595, फोन करिए बताइए किस मूवी का गाना था और हमसे बात करिए, यू कुड बी द लकी विनर। बढ़ते हैं तब तक अगले गाने की तरफ।

0: रेडियो नायरा पर, बजेगा सिर्फ।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
2: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स।
1: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की।
3: हेलो, वेलकम बैक। मैं हूं अर्पित और आप सुन रहे हैं दूसरे की बातें, एंड वी हैव वन कॉलर विद अस, सो लेट्स टॉक टू हिम। हेलो हेलो हेलो, जी हाँ, किससे बात हो रही है मेरी?
4: मैं अमित बोल रहा हूँ।
3: अमित साहब, कैसे हैं आप?
4: आई एम गुड, हाउ आर यू?
3: आई एम गुड, आई एम वेरी गुड नाउ, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ।
4: ग्रेट।
3: तो आप, मुझे लगता है आप जवाब देना चाहेंगे अपनी 90s की विद्या का जो आपने अर्न करी है 90 के दशक में।
4: द मूवी इज आशिकी और उसका वो वाला गाना है, चांद की जरूरत है जैसे
3: सांस की जरूरत।
4: आई
3: नो, क्या लेजेंडरी गाने थे ना उस मूवी के।
4: Awesome.
3: सारे गाने लाइक कितना रेयर होता है ना कि पहली मूवी कोई बनी है, डेब्यू कर रहे हैं, उसके अंदर सारे गाने हिट है, पिक्चर सुपर हिट है और बाद में जाके फ्लॉप हो गया सब कुछ।
4: आई नो, बस वो एक ही पिक्चर थी।
3: वेल, उनकी जुनून मूवी देखी है? जुनून, राहुल रॉय की।
4: जुनून भी देखी है मैं।
3: क्या खतरनाक मूवी थी यार, मैं तो सो ही नहीं पाया था पिक्चर देखने के बाद। काफी टाइम तक इतना असर था, 2-3 साल तक, कि जब भी फुल मून या नो मून होता था कैलेंडर में मार्क करके उस रात में मम्मी पापा के साथ सोता था।
4: वो बहुत स्केरी थी।
3: कंसेप्ट भी अच्छा था ना, लाइक स्केरी कंसेप्ट कि शेर ने खरोच दिया है, अब आप शेर बनते रहेंगे। तो मुझे तो एक बार कुत्ते ने खरोच लिया, तो मुझे लगा मैं क्या कुत्ता बनता रहूंगा।
4: और जिसको आप खरोचेंगे वो भी बनता
3: रहेगा। हाँ, यही सोच के ना मैं अपनी अपनी बहन को बहुत काटता था। कुछ हुआ नहीं है सर। Well, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड क्योंकि एज आई सेड कि अब जो होंगे वी हैव टू डू द रैफल, तो आपका नंबर हम लॉटरी में डालेंगे, एंड इफ यू गेट लकी तो आपको मिलेगा 1 टिकट जो प्रभु देवा साहब जो आ रहे हैं सैटरडे संडे को, तो उनके शो की, और मैं अनाउंस करूंगा ये जो भी लकी विनर्स होंगे बाय एंड ऑफ द शो, तो होपफुली यू विल विन, विल सी।
4: ओके,
3: all right, well thanks for calling. Yeah, bye
4: bye, thanks.
3: तो ये थे अमित साहब, जिन्होंने राहुल रॉय साहब की जरूर मूवी देखी है और उन्होंने बड़ा अच्छा आइडिया दिया यार उस टाइम के अंदर। मुझे इतना अच्छा आइडिया नहीं आया कि यू नो खरोच के अगर शेर बन सकते हैं तो खरोच के आप दूसरे को खरोचो वो भी कुछ बन जाएगा। well, सही है यार, मैंने इतना अच्छा ट्राई नहीं करा, मुझे करना चाहिए था। नॉट कि मुझे शेर ने काटा था, जैसे कि मैंने बताया मुझे कुत्ते ने काटा था, बट हाँ मुझे ये अकर नहीं करा कि यार मैं अभी किसी और दोस्तों को खरोच दूं तो हम दोनों मिलके यू नो लाइक गलियों में टहला करेंगे जब नो मून होगा या फुल मून होगा। कहते ही बकवास करवा लूँ उससे। एनीवेज, चलिए बढ़ते हैं अगले थीम की तरफ, एंड आई हैव टू कॉल बैक सो मैनी पीपल। तो ये आंसर हो चुका है, बट वी हैव टू गिव ऑप्शंस टू अदर पीपल एज वेल। तो ये गाना सुनते हैं और ये बताइए कौन सी मूवी का है।

तो जो इस मूवी के फैन होंगे डूड, उन्हें तो पहली लाइन से समझ में आ गया होगा, मैं इस मूवी के बारे में हिंट देके इस पिक्चर की तौहीन नहीं करना चाहता। तो फोन करिए, नंबर है 919-999-8595 और बताइए कितने बड़े फैन हैं इस मूवी के, यहाँ पे भी, इस पूरी दुनिया में भी। तब तक बढ़ते अगले गाने की तरफ।

0: ऑलराइट, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम सीधे कॉल की तरफ जाते हैं। हेलो हेलो,
1: हाय
0: हाय, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप बताइए, आप कैसे?
0: मैं बस बढ़िया। किससे बात हो रही है मेरी?
1: मेरा नाम रोहित है।
0: रोहित साहब, कैसे हैं आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आज?
1: मैं कैरी से बोल रहा हूँ। मैं आपके साथ काफी कनेक्ट कर पाता हूँ क्योंकि मैं भी केंद्रीय विद्यालय का ही स्टूडेंट हूँ। व्हेन यू टॉक लॉट अबाउट केंद्रीय विद्यालय, मैं कोरिलेट कर सकता हूँ।
0: कौन सी केवी से पढ़े हैं?
1: और अभी मैं केंद्रीय विद्यालय सैनिक विहार दिल्ली से पढ़ा हूँ। एंड फ्यू मिनट्स बैक आप बोल रहे थे ना, वो अपना ट्वेल्थ का जो केमिस्ट्री का जो वाइवा था, राइट?
0: राइट।
1: मैं क्विकली बताता हूँ, मेरा उस टाइम एक्सपेरिमेंट था टाइटेशन का, अभी भी मेरे को याद है। और जो वाइवा हुआ था तो उसमें हमसे आई थिंक हाँ केंद्रीय विद्यालय में दूसरे टीचर्स आते थे।
0: राइट।
1: वाइवा में क्वेश्चन पूछा था, रस्टिंग की सारी इक्वेशंस बताओ। वाह, आज भी याद है मेरे को, मैंने सारी बताई थी। एंड तो वो केंद्रीय विद्यालय याद है मेरे को, सुबह की मॉर्निंग प्रेयर एंड एवरीथिंग।
0: और प्रेयर के अंदर गिर जाना रैंडम बच्चों का।
1: पूछता हूँ, हाँ मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ बिफोर आपका आंसर। आपका हाउस कौन सा था केंद्रीय विद्यालय में?
0: हाउस यार हर साल चेंज होते थे, तो मेरा रमन रमन रहता था मोस्टली। सबसे घटिया मेरा एक्चुअली रमन, बाकी मैंने सुना था केवीस के अंदर अच्छा होता था, मेरा हमेशा सबसे पिछड़ा हुआ रहता था क्योंकि हम कुछ नहीं करते थे। सबसे अच्छा सुभाष चलता था, आजाद होते थे, ये बड़े अच्छे वाले होते थे, ये टॉप के रहते थे, मैं हमेशा लास्ट बेकार वाले में रहता था। वेल जैसा कि आपने बताया कि आप सैनिक विहार के केवीस हैं, राइट भाई, आप कहाँ रिलेट कर पाओगे? आपका केवी अच्छा होगा, उसके अंदर विंडोज होंगी, बिल्कुल बनी हुई, पंखों में लाइट होगी, सब चलता होगा, हमारी तरह थोड़ी ना केवी होगा
1: भाई। मेरा 10th तक टेंटो वाला स्कूल था, 10th के बाद वो बिल्डिंग बनी थी, तो मुझको पूरा याद है 10th बच्चा था भी थी, हम कैसे बैठते थे।
0: राइट, बट हाँ ये जरूर है केवी के अंदर जो बच्चे होते हैं ना, किसी ना किसी चीज के अंदर, दैट अप्लाइज टू एवरी स्कूल, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता था केवी के अंदर जो पढ़ाई में माहिर है वो पढ़ाई में भी है, जो स्पोर्ट्स में है वो स्पोर्ट्स के अंदर माहिर है। जैसे आपको अभी तक वो इक्वेशंस याद है, तो आई थिंक यही ब्यूटी थी हमारे स्कूल की यार, केवी इसलिए अच्छे लगते हैं, यू नो रिसोर्सेज कम है और उसी के अंदर बच्चा जो है वो जुझारू बन रहा है कि जितने रिसोर्सेज है उसी के अंदर अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी है।
1: केवी की तो बात ही अलग है।
0: वेल बड़ा मजा है यार आपसे बात करके, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अरे अरे अरे अरे अरे, वो तो बताइए आपका आंसर क्या है?
1: मूवी नेम इज रहना है तेरे दिल में, तो वो टाइटल सॉन्ग है इसका ही, वो कहना कहना है तेरे दिल में, कहना है रहना रहना, मैडी हमारा फेवरेट उस टाइम का।
0: आई नो, क्या मूवी है ना यार। और ये जो मूवी है जो मैंने ट्यून सुनाई है, आई थिंक ये स्पेशल वो रेन डांस थीम थी, जब वो फर्स्ट टाइम बारिश में जो माधवन होता है मैडी, वो उसको देखता दिया मिर्जा को, उनकी गाड़ी खराब हो रखी होती है, बच्चों के साथ के डांस कर रही होती है, वन फ्लैश, और वो अपना दिल खो देता है।
1: इससे ज्यादा मैं कह सकता हूँ, जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिन लोगों ने किया है वो इस मूवी के साथ रिलेट कर सकते हैं।
0: तो आपने कुछ ज्यादा रिलेट करा है, ऐसा लग रहा है।
1: True, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में की है, बट मेरे फ्रेंड सारे मैकेनिकल में थे, तो वो इस गाने इस मूवी से काफी वो मतलब वो काफी इन्फ्लुएंस हुए थे उस टाइम पे,
0: उनके दिल में फायर होनी चाहिए, फायर।
1: That is true. तभी हमारा कंप्यूटर वालों के साथ 36 का आंकड़ा था।
0: ये मूवी इतनी बार देखोगी आई एम श्योर आपने भी कि इसके डायलॉग्स याद हो गए होंगे, एक एक डायलॉग याद होगा इस मूवी का।
1: राइट, हाँ करेक्ट,
0: बढ़िया,
1: इसके तो काफी याद है।
0: क्या बात है भाई, बड़ा मजा लगा है आपसे बात करके। एंड जैसा कि मैंने कहा कि नाउ आपका नाम हम डालेंगे रैफिल के अंदर, एंड हो
2: सुरंग सी बागी उड़ान पे ना जाने क्यों
0: लगी, तो होंगे आप विनर होंगे, तो आपको हम बताएंगे बाय एंड ऑफ दिस शो, एंड देन यू विल गेट वन टिकट टू प्रभु देवा शो।
1: दोबारा
0: फोन करिएगा नेक्स्ट शो के अंदर, हम बिल्कुल हम शो पूरा आप ही बना देंगे, सिर्फ और सिर्फ केवी के बारे में बात करेंगे, हम पूरा ग्रुप बनाएंगे
1: हमारे इस मॉर्निंग प्रेयर भी होनी चाहिए।
0: राइट, आप भी कभी गिरे हैं क्या असेंबली के अंदर धूप में?
1: नहीं, मैं दोस्तों को उठाता था, वो गिरते थे मैं उठाता था, क्लास में लेके जाता था मैं उस मामले
0: में. बढ़िया. वेल थैंक यू फॉर कॉलिंग. यप थैंक यू फॉर कॉलिंग.
1: थैंक यू थैंक यू.
0: चलिए
1: बाय. थैंक यू बाय.
0: तो ये थे रोहित साहब जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ना करते हुए भी इनके दिल में एक फायर थी जो इन्होंने इतनी बार रहना है दिल में देखी और रट ली है. और ये ऑफ कोर्स केवी से थे तो मुझे अलग ही अटैचमेंट है इनसे. वेल अगली तरफ बढ़ते हैं, अगले ट्रिविया की तरफ. एंड लेट्स सी ये कितने लोगों को पता होगा. आई एम श्योर जो 90s के हैं इनके लिए तो ये जुबानी होना चाहिए. तो बढ़ते हैं अगले ट्यून की तरफ.

0: इतना काफी है, बहुत सारा सुना दे रहा हूँ, ये मुझे लगता है कि ये इतना सारा सुना देना ये आप लोगों की इंसल्ट है। ये वो ट्यून्स हैं जो विद इन सेकेंड हो जाने चाहिए और मैं इतना ज़्यादा सुना रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं आप लोगों की तौहीन कर रहा हूँ। बट कोई नहीं, फोन नंबर घुमाइए 9199998595 और बताइए किस मूवी का गाना है, एंड यू मे गेट लकी। हो सकता है शो की टिकट जो प्रभु देवा साहब का हो रहा है उसकी टिकट एक आपको मिल जाए।
1: आज का प्लान क्या है, सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक, प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री, एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव मॉरिसविल, कॉल करे 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
2: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स।
1: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा,
2: एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स।
1: प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन?
2: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
1: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
2: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.

0: अमन कैसे हैं आप? सच अ नाइस नेम.
1: या थैंक यू. बढ़िया है. आपके गाने सुनते मैं ऑलवेज ड्राइव करता हूँ.
0: अरे
1: होम टू लाइक बैक टू होम. या
0: थैंक यू वेरी मच. आई होप आपको गाने अच्छे लगते हो, क्योंकि गाने बस मैं अपने मन से चला देता हूँ. आई होप कि वो मन आपके गानों के जो है उससे भी मैच करता हो, आपकी जो चॉइस है.
1: डेफिनेटली न्यू गाने तो आपको मन ताजा करते हैं, बट उससे भी ज्यादा नॉस्टैल्जिक सॉन्ग दैट इज प्लेड.
0: आई नो दैट इज द होल लाइक आइडिया कि दो घंटे हम सरप्राइजिंग वो गाने सुने जो हम बस हमें मालूम तो है, सब हम भूल चुके हैं. राइट. तो आप गाना सुन रहे थे, तो आपको आई डू नॉट नो, अभी तक मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लाइक यू नो ट्यून चला चुके हैं, आप कौन से ट्यून के थे जिस पे आपको आंसर करना था?
1: मैं आशिकी वाला जो गाना था ना, उस पे मैं कॉल कर रहा था एक्चुअली.
0: जी,
1: तो आशिकी का जो आपकी बात चल रही थी, दिस इज आई थिंक आई ऑलरेडी नो दैट, बट डेफिनेटली दैट वाज आल्सो माय वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग एट दैट एज.
0: या कोई नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है कि पहले बात हो चुकी है. तो आशिकी इतनी अच्छी मूवी है, उसके बारे में कई बार बात हो चुकी है, हो सकती है.
1: यस
0: जी,
1: यस डेफिनेटली.
0: तो आशिकी मूवी आपने लाइक 90s के अंदर अभी अभी रिसेंटली दोबारा देखी है, या बस वही जो 90s में एक बार देखी थी वही आपको याद है?
1: नहीं, दोनों देखी मैंने.
0: आशिकी 2
1: आशिकी 2
0: सही है. मैंने आशिकी 2 नहीं देखी है, तो आई एम सॉरी, मैं उस बारे में ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा. राइट. सो राहुल रॉय साहब, आई मीन एक वैसे कहते हैं ना ये संजय दत्त थे, उन्होंने लंबे बालों का फैशन करा था, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल रॉय ने भी वो जो था ना फैशन, वो ज्यादा प्रोमिनेंट करा. उनपे कितने सूट करते थे वो लंबे बाल.
1: राइट. राहुल रॉय ने एक्चुअली वो स्प्लिट हेयर का फैशन स्टार्ट किया था, जिसमें बीच में एकदम स्प्लिट करते थे हेयर.
0: अच्छा, हाँ राइट.
1: तो उसके बाद आई थिंक सारे लड़के हमारे कॉलेज में सारे वही.
0: आई नो, या कई बार कितना इंस्पायरिंग जो भी होता है ना, एक ट्रेंड बना ही देते हैं. जो हीरो हीरोइंस होते हैं उनको देख के हम इतने इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं कि हम उन्हें फॉलो करने लगते हैं.
1: करेक्ट. वो भी था उसके बाद में तेरे नाम का आया, वो भी सेम एग्जैक्टली वही स्टाइल.
0: मैं यही बोलने वाला था. राइट. बट तेरे नाम ठीक है, वो जो बाल थे वो थे जैसे भी, लेकिन हाँ मुझे लगता है जो राहुल रॉय के सिल्की बाल थे ना, बिल्कुल अच्छे से उनका चेहरा रंगा था, और सच अ फ्रेश जो उनका फेस था, तो उनपे काफी अच्छा लगता था मुझे लगता है.
1: करेक्ट. आपने वो जुनून मूवी की बात की, उसके बारे में आई डेफिनेटली रिलेट दैट. वो एग्जैक्टली वो टर्न होता था इसमें बाद में. डेफिनेटली इट वाज स्केरी पार्ट ऑफ माय चाइल्डहुड. रात में हम बाहर ही नहीं निकलते थे, तो बाहर मत निकलो भाई.
0: उसके अंदर कुछ तो सीन थे जो बहुत स्केरी थे. एक तो फर्स्ट सीन जो मुझे लगता है, एक तो सीन था वो जब फर्स्ट टाइम शेर उन्हें मारता है और वो गिरे पड़े होते हैं जख्मी हालत में, और सारे गांव वाले लाठी लेके आते हैं, वो मुझे बहुत स्केरी लगता है. यू नो प्रॉपर जो ट्यून है और जो बैकग्राउंड उसके अंदर स्कोर चल रहा है, और थोड़ी सी सन मून लाइट आ रही है. और
1: मुझे अभी भी याद है वो आई थिंक आर्टिफिशियल वो जो क्लॉज यूज किया था. राइट. आई स्टिल रिमेम्बर इट, स्टिल आई कैन रिलेट टू दैट क्लॉ. वो उस टाइप इतना डेंजरस लगता था. राइट. व्हेनेवर आई सी दैट क्लॉ इट्स लाइक समथिंग लाइक हॉरर टाइप है कुछ तो, नॉट जस्ट लाइक अ बग. बग एनिमल नहीं, एनिमल से ज्यादा वो हॉरर से रिलेट करते थे.
0: करेक्ट. दैट्स ट्रू. या ये मुझे अच्छा याद आ गया, मुझे लगता है मुझे दोबारा मूवी देखनी पड़ेगी. अब मुझे थोड़े थोड़े उसके सारे सीन्स याद आ रहे हैं जिसके अंदर वो जिंदा होते हैं दोबारा, और फिर वो बाथरूम के अंदर शेर बनता है, उसके बाद लाइक यू नो फिर एक प्रॉपर सीन दिखाते हैं होटल ग्रैंड लॉबी के अंदर शेर बनता है. ओ मैन, कितना स्केरी था सारा मूवी, बट इट वॉज अ वेरी नाइस मूवी. लाइक जो उसको पर्पज था उसने अच्छे से सॉल्व करा. वेल, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके अमन. थैंक यू फॉर कॉलिंग. एंड एज आई सेड कि हम आपका नाम डालेंगे रैफल के अंदर, एंड विल सी हु विंस. हम नाम अनाउंस करेंगे बाय एंड ऑफ द शो.
1: चलेगा. मैं मेरी खुशी हुई आज आपसे बात करके. मैं ये सोचता हूँ कि आपसे कुछ ना कुछ टॉपिक पे बात करें. डेफिनेटली मैं एवरी टाइम मैं एग्जैक्टली 5 to 6 में ऑफिस से घर जाता हूँ, तो आप कभी ये ट्यून इन करता हूँ और उसमें चला देता हूँ. पूरा एकदम सफर अच्छे से कट जाता है, नो टेंशन.

0: तो आज क्या काम जा रहा था? लेट हो गए, 6:30 बज गए। सही है, अच्छी ग्रोसरी शॉपिंग करिए, मौसम बढ़िया है। आई नो गर्मी है, उमस है, लेकिन अगर घर के अंदर बैठे हैं और विंडो के बाहर देख रहे हैं तो पकौड़े खाने का तो बिल्कुल वक्त बनता है।
1: बहुत सही नाम है, अभी जाके अभी भाई बैठ के चाय बनाता हूँ।
0: आई एम सॉरी क्या ये आपकी फैमिली को मैं कष्ट दे रहा हूँ? बढ़िया, आई एम सॉरी। या चलिए आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग।
1: थैंक यू,
0: बाय।
1: थैंक यू, गुड डे, बाय।
0: तो ये थे अमन साहब और इन्होंने बड़ी अच्छी बातें करी हैं जुनून के बारे में, और अब मुझे लग रहा है मुझे ये मूवी देर का देर कभी ना कभी उन्हें देखनी पड़ेगी, मोस्ट लाइकली इस वीकेंड में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले गाने, अगले क्लू की तरफ। ओ अगला क्लू तो मैंने एनीवेज मैंने राइट मैंने डाला ही नहीं है, अभी तक पिछला क्लू ही चल रहा है। तो ठीक है, हम फिर से मौका देते हैं उस गाने को दोबारा चला के, क्योंकि उसका आंसर आई थिंक अभी तक मुझे मिला नहीं है। इंस्टेड ऑफ कि मैं नए गाने लोड करूं, तो लेट्स प्ले दैट सॉन्ग अगेन एंड सी कौन फिगर आउट करता है इसको।

0: ऑलराइट, तो मैंने दो बार चला दिया, बहुत बड़े क्लूज दे चुका हूँ इस गाने के बारे में, क्योंकि दिल मेरा है कि मान ही नहीं रहा है। तो चलिए फोन करके बताइए, नंबर है 9199998595।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: तुमने कभी किसी से प्यार किया?
3: किया!
2: कभी किसी को

0: वेलकम बैक, मैं हूँ अर्पित और आप सुन रहे हैं इधर उधर की बातें। एंड लेट्स डायरेक्टली जंप टू द कॉल। हेलो,
1: हेलो,
0: हाय, हेलो,
1: हाय,
0: हु इज दिस?
1: दिस इज गीता।
0: गीता, हाउ आर यू?
1: आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? सच अ ग्रेट शो।
0: वेल, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू वेरी मच, दैट मेक्स माय डे।
1: श्योर थिंग।
0: So, I'm guessing you are listening our show, and then you might want to answer one of the trivia questions that I like just played.
1: Yes.
0: So, what's the answer?
1: So, it's a movie is from Dil Hai Kya Manta Nahi, so the title track song.
0: Yeah, that's right. Is it your favorite movie or something? Or this is like, yeah, you just watched it one time?
1: Not my favorite movie, but Aamir Khan, Raghu Jaitley, the character, Pooja Bhatt's first film, and we lived in the era of Nazeem Shravan in the early 90s, starting with Aashiqui, the track you played. So, Mukesh Bhatt's movie. And we used to, at that time, go watch every movie in the theater, skip college and go watch movies. That was fun.
0: Yeah, I mean even this movie, just like Aashiqui, I think most of its songs, they were super hit.
1: Yeah, I think all the songs with Nadeem Shravan, whether it was Sajan, the other movie with Kumar Shanu, Anuradha Porwal, and this was on your radio, this was on your play recorder, you used to get cassettes then, and
0: true.
1: This is the collection you had. Yeah.
0: That's true.
1: So amazing, amazing time.
0: Yeah. I think that movie, of course, it's like, I won't say it's copied, but it's kind of inspired from one of the English movie, the whole storyline.
1: It is, I think. Yeah, from 1934, a Hollywood movie.
0: Oh, really? Wow. Oh,
1: but
0: man, you
1: well.
0: Have
1: it
0: such a good
1: well
0: knowledge.
1: No, but it did well for the Indian market. I mean, and a new fresh face with Pooja Bhatt. And then Aamir Khan was our chocolate boy since USQT movie.
0: That's right.
1: So
0: he was very cute. Like, if you watch his first movie, Kiamat Se Kiamat Tak, I mean, he just like is more prettier than the actresses. That's what I feel like most of the time.
1: And then a star is born, or for the younger generation, especially if you lived in Bombay and they are out there putting the posters of their own movie on the cab.
0: Oh yeah, I have seen that. I have seen that video.
1: Yeah.
0: His interview where he was saying that's how he was promoting his movie, by putting, like, he was asking all those auto drivers, can he put his poster, like movie poster, on the backside of the cab? Yeah. And he wrote the story of that movie. He wrote the story of that movie.
1: Yes. Yeah. And he didn't have to do that because he was born in a family that made movies. So with his father and his uncle.
0: What was his first movie? Aamir Khan's first movie?
1: I think he was in his uncle's that movie with, hold on, jisme wo gana hai, Zeenat Zaman Wala. Chura Liya Hai. I think he played a star actor in that movie.
0: Yeah, he was a child artist. But as in proper actor, what do you think?
1: Mansoor Khan's movie. Yeah. And then he learned filming. Because I think he's releasing, isn't the Sunny Deol movie coming out with Preeti Zinta? That's Aamir Khan Productions. I think it's releasing. Bachwara.
0: Oh, I do not know. That's a new upcoming movie.
1: I have a lot of information. Sorry.
0: You are.
1: I think there's a new movie.
0: Yeah, you are like an encyclopedia on Aamir Khan right now.
1: Well, we love movies. So we love Hindi movies.
0: Oh, that's awesome. That's very awesome. Well, thank you very much for calling us, Geeta. And we will announce the winners by end of the show, and hopefully you will win one.
1: Yes, I hope too. So I can go see the Maestro dance. So that will be perfect.
0: Yep.
1: Yeah.
0: All right. So thanks
1: very
0: for calling.
1: Good. Thank you for taking my call. You have a great day.
0: You too. Bye.
1: Bye.
0: तो ये थी गीता जी, जिन एंड आई वाज सरप्राइज्ड, लाइक अमेजिंग यार, क्या इन्फॉर्मेशन थी। लाइक शी न्यू इट कि 1934 की कोई मूवी थी जिससे दिल चाहता है, नॉट दिल चाहता है, दिल है कि नहीं मान, दिल है कि मानता नहीं, वाज इंस्पायर्ड। अमेजिंग यार, मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। सारे लोग अच्छे लगते हैं, बट यू नो लाइक जो इतना मूवीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, दे आर जस्ट नॉट की एंजॉयमेंट के लिए देख रहे हैं, दे आर कीपिंग दैट इन्फॉर्मेशन और वो भूल नहीं रहे उस चीज को, दे आर लिविंग टू दैट थिंग. अमेजिंग, मजा आया बात करके आपसे गीता जी. वेल वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो मेरे पास एक और चांस है, मैं फटाफट एक और क्लू चला देता हूँ एंड लेट्स सी मैंने क्या लोड करा है. ओ दिस इज नॉट मूवी, दिस इज समथिंग एल्स. वेल देखते हैं ये किसको पता होता है, क्योंकि ये बहुत बहुत पुराना एड है, लेकिन ये एड या ये सबने खाया ही खाया, मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया, बट चलो ठीक है सुनते हैं इस चीज को.
2: हमको पता है जी,
3: आपको पता है जी,
2: सबको पता है जी,
3: सबको पता है जी,
2: बरसों से चाहत अपनी यही है जी.
0: और राइट, सही टाइम पे मैंने रोक दिया, वरना पूरा एड ऐसी की तैसी हो जाती. एंड एंड जरूर बताइए किस चीज का एड है. नंबर है 9199998595. एंड इससे पहले मैं अगला गाना सुनाऊं, आई एम वेरी सॉरी, काफी कॉल्स आ रही है, मैं ब्रैग नहीं कर रहा हूं, बट मुझे बहुत खेद हो रहा है कि मैं सारी कॉल उठा नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत तुच्छ प्राणी हूं, छोटी छोटी उंगलियां हैं मेरी एंड आई एम हैंडलिंग सो मेनी थिंग्स. सो आई एम रियली सॉरी अगर मैं आपकी कॉल मिस कर रहा हूं. आपको दोबारा मौका मिलेगा कल वैष्णवी के शो में, फ्राइडे को ज्योति के शो में, तो प्लीज फोन करिएगा, आपको टिकट्स मिल सकती हैं और बात करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज वेल. तो प्लीज सॉरी और निराश मत होइएगा अगर मैं आपकी फोन नहीं उठा पा रहा हूँ और अगर आप आज टिकट नहीं जीत पाते हैं. टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, अगला गाना सुनाते हैं और तब तक मैं वेट करता हूं, मैं देखता हूं मैं किसको कॉल बैक कर सकता हूं.
4: रेडियो नायरा पर बजेगा सिर्फ बेस्ट हिट्स.

तो जिंदगी हसीन है, मगर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने प्यार किया है, क्योंकि सिर्फ प्यार करने वाले जानते हैं कि आन बान और शान से जीना किसे कहते हैं, है ना।

0: ओके, हम फटाफट एक आखिरी कॉल लेते हैं. हेलो
1: हेलो
0: हेलो, किससे बात हो रही है मेरी?
1: अर्पित भाई, मैं संग्राम बात कर रहा हूँ. दिस इज संग्राम.
0: संग्राम, कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ, आप बोलो. फर्स्ट ऑफ ऑल अर्पित, थैंक यू वेरी मच फॉर रनिंग दिस लाइव शो. आजकल के स्पॉटिफाई के जमाने में नए जनरेशन को क्या पता कि व्हाट इट मींस टू टॉक टू अ रेडियो जॉकी ऑनलाइन. सो कांग्रेस फॉर डूइंग दिस फर्स्ट ऑफ ऑल.
0: अरे वेल, थैंक यू फॉर लिसनिंग इट, क्योंकि सेम गोज टू यू एज वेल. कि आज के जमाने में किसको पता है कि लाइव रेडियो शो सुने. स्पॉटिफाई है, अपने गाने आप खुद चुन सकते हैं, खुद सुन सकते हैं. तो दैट इज ऑल्सो, आई एम रियली अप्रिशिएट दैट.
1: एग्जैक्टली. मैं मेरे बच्चे को हमेशा बोलता हूँ कि लाइफ, जिंदगी होनी चाहिए रेडियो की तरह, अनप्रेडिक्टेबल, गो एज इट गोज, ना कि स्पॉटिफाई आई शुड कंट्रोल.
0: लाइव शो के अंदर आपको पता चलता है कि आप क्या गलतियां करते हैं, उस गलती को कितने आसानी से आप सीखते हैं, एडमिट करते हैं और उसे रिकवर करते हैं. सो दैट्स आल्सो काइंड ऑफ लाइफ लेसन.
1: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला आपने.
0: ये तो मेरी तारीफ हो गई, बट एनीवेज. तो अगर आई एम होपिंग कि आप हमारा सुन रहे थे ट्रिविया, एंड यू माइट वन आंसर. मुझे नहीं पता कौन से गाने कहाँ पे आपने कितना सुना है, तो लेट्स से.
1: हाँ, मैंने तो एक गाना जस्ट आते समय सुना था, दिल्ली की मानता नहीं, हमारे फेवरेट आमिर साहब का.
0: हाँ जी.
1: और पूजा भट्टी का. और बाकी का तो उतना ही मैं सुन पाया जब जितना मुझे टाइम मिला.
0: उतना ही चलाया, उसके बाद मैं बात ही कर रहा हूँ आप लोगों से.
1: हाँ. बढ़िया बढ़िया.
0: वेल, काफी अच्छी हिट मूवी थी. मुझे याद है जब पापा मेरे बैंक से आते थे तो उनका दूर था, तो अप एंड डाउन करते थे, तो कई बार वो लाइक यू नो ट्रेन उससे आ रहे हैं, बस से या ट्रक से, ही बस लेट हो गई है, तो उसके अंदर ही गाने बजते थे. तो ये इतने पॉपुलर थे कि हर जगह गाने बज रहे हैं इसके.
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो माहौल ही ऐसा था. मतलब वो हमें नॉस्टैल्जिक करता है, और जिन लोगों ने इन गानों को सुना है और सुनते सुनते बड़े हुए, वही उसको कोरिलेट कर पाएंगे. तो बिल्कुल सही कहा आपने, वो हमें उस दौर में लेके जाते हैं.
0: राइट. और मुझे लगता है कि हमने गाने, या तो ये हो सकता है कि इनकी ट्यून इतनी प्यारी है, या हमने गाने इतनी शिद्दत से सुने हैं, या बस इतनी बार सुने कि अगर फर्स्ट सेकेंड या दो सेकेंड का शुरू का सुन लेना, हम बता देते हैं कि ये गाना कौन सी पिक्चर का है, कौन सा गाना है.
1: बिल्कुल, वो मसल मेमोरी बन जाती है. जैसे मैं कॉलेज के टाइम में दिल चाहता है कि गाने सुनता था, तो मुझे वो ऑटोमेटिकली लगता है कि अरे हाँ, इसके बाद ये गाना आएगा, अभी ये गाने का ये मुखड़ा चलेगा, ये अंतरा चलेगा, तो हम पूरा उसमें घुल मिल जाता है. तो बिल्कुल सही बोला आपने.
0: वेल, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आप सुनते रहिए हमारा शो. मुझे अच्छा लगा कि आप सुनते हैं रेडियो शो आज के जमाने में, जहाँ पे पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई जैसी चीजें हैं. वेल, थैंक यू फॉर डूइंग दैट थिंग. And as I said, कि हम आपका नाम डाल देंगे raffle के अंदर, and we'll see who wins today. And just after this call, मैं नाम announce करूँगा.
1: बिल्कुल, मैं तो raffle already win कर चुका हूँ आपसे बात करके. But again, आप बनी रहिए और देखते, और मैं मेरे अपने family वालों से भी बोलूँगा कि keep listening Radio Naira.
0: Please, yep, thank you very much. Bye.
1: All right, brother, take care and have fun. Bye.
0: Cheers. Bye. जी हाँ, तो ये थे संग्राम साहब. बड़ा अच्छा लगा यार आप लोगों से बात करके. तो दोस्तों, देखते ही आज का सफर हमारा आखिरी मोड़ तक आ पहुंचा है. सच कहूँ ना तो आज बहुत मजा आया. आप सब ने इतने एंथू के साथ पार्टिसिपेट करा आखिरी के एक घंटे के अंदर, कि भाई मैं कई लोगों के फोन नहीं उठा पाया, तो आई एम वेरी वेरी, बहुत मुझे बुरा लग रहा है. बट प्लीज फोन करते रहिएगा, कल भी शो है लाइव वैष्णवी का, उसके बाद ज्योति का है, और आई एम श्योर उसके अंदर भी आपको टिकट जीतने का मौका मिलेगा, तो जरूर करिएगा. आज तो मुझे बड़ा मजा आया. एक तो मेरी बात हुई, ऑफकोर्स मैं नाम सबके इतनी तरीके से याद नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ, मेरे केवी वाला फ्रेंड, जिससे केवी वाले से बात हुई, मेरी बड़ा मजा आया. मेरी बात हुई जिनको व्योमेश बख्शी बहुत पसंद था, और फिर एंड में हमारी बात हुई जो आमिर खान साहब की एनसाइक्लोपीडिया थी पूरी, और फिर हमारे संग्राम साहब. वाह, मजा ही आ गया इन सबसे बात करके. वेल, तो अब टाइम है रिजल्ट अनाउंस करने का. तो ऑफ कोर्स हमारे राहुल साहब, जो पहले घंटे में जिनका पहला कॉल और आखिरी कॉल आया था, तो वो तो है ही हमारे विनर. एंड लेट मी शफल दिस थिंग, एंड ऑलराइट, सो हमारे सेकंड विनर है रोहित साहब. वाओ, कांग्रेचुलेशंस. एंड द थर्ड विनर इज गीता मैम. Congratulations. So Rahul, Rohit and Geeta, congratulations to you guys, and we will contact you with the details sometime later tonight. और बाकी लोग जिनका मैं फोन नहीं उठा पाया या जो लोग नहीं जीत पाए हैं, प्लीज डू कॉल बैक अस. कल बात करिएगा, परसों बात करिएगा, शो में बहुत टाइम है, बहुत मौके मिलेंगे जीतने के, और ऑफ कोर्स हम तो आपसे बात करना चाहते हैं, दैट्स सरप्राइज टू अस. तो प्लीज डू कॉल अस. तब तक मैं निकलता हूँ, अच्छे से रहिएगा, सेफ रहिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी ना किसी के लिए. तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय.
2: आज की शाम उनके नाम जो करते हैं क्या लव लव

0: गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 में रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपके मूड को रिफ्रेश। कैसे चल रहा है आपका वेनसडे? जी हाँ, ठीक 7 बज चुके हैं और मंडे और ट्यूसडे का सारा प्रेशर अब खत्म हो चुका है। वीकेंड अब बस कुछ ही दिन दूर है और अब समय है अपनी अपनी गाड़ियों के शीशे थोड़े से नीचे गिराने का, ठंडी हवा का मजा लेने का और अपने रेडियो की वॉल्यूम को फुल स्पीड में करने का। मैं हूँ सबके दिलों का चिराग, जैसे कि मैंने बताया है, नाम है मेरा आरजे पराग। 7 से 10 हमारा ये शो चलता है एंड सभी मेरे प्यारे दोस्तों को आज की शाम का प्यार भरा ये वेलकम। आज के शो में एंजॉय करने वाले हैं हम बहुत सारा अच्छा म्यूज़िक, एंजॉय करने वाले हैं कुछ लोकल खबरें के साथ, बॉलीवुड का तड़का भी लगने वाला है, बने रहिएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 एएम रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: डू यू डिजायर फॉर कंटेम्पररी एंड क्लासिक ज्वेलरी डिजाइंस टू फिट एवरी ओकेजन? खन्ना एंड सन्स ज्वेलर्स हैज यू कवर्ड फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स। वी क्राफ्ट द प्योरेस्ट 22 कैरेट गोल्ड एंड 18 कैरेट डार्जिलिंग डायमंड्स ज्वेलरी विद टॉप क्वालिटी एंड फिनिश। वी ऑफर बेस्ट वैल्यू इन ज्वेलरी अलॉन्ग विद टॉप क्राफ्टमैनशिप एंड फेयर मेकिंग charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come see us for all your jewelry needs at Khanna and Sons Jewelers in Cary, North Carolina or call us at 9193883.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक, प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। Everyday open between 5 PM to 10 PM, Monday to Sunday. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 Davies Drive, Morrisville. कॉल करे 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

0: और सबसे बड़ी स्थानीय खबर हमारी पड़ोसी शहर धरम से आ रही है, जहां पर्यावरण और जनता की सेहत को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है। नॉर्थ कैरोलिना के एक अदालत ने एक बड़ी रासायनिक कंपनी ब्रिटैंग को धरम की मशहूर थर्ड फॉर क्रिक नदी में हो रहे केमिकल रिजाव और वाटर पोल्यूशन को तुरंत के तुरंत रोकने का सख्त कानूनी आदेश दिया है। कोर्ट ने कंपनी मैनेजमेंट को जबरदस्त फटकार लगाते हुए कहा है कि वे धरम शहर प्रशासन को उस पूरी राशि का तुरंत भुगतान करे जो नदी के किनारे प्रदूषण की चेतावनी वाले बड़े बड़े साइन बोर्ड लगाने में सरकारी खजाने से खर्च हुई है। इसके साथ ही जज साहब ने कंपनी को कड़े निर्देश दिए हैं कि आगामी 17 अगस्त तक पर्यावरण विभाग को इस लीकेज की पूरी इनसाइट रिपोर्ट और इसे रोकने का परमानेंट प्लान सौंपना होगा। तो धरम वालों, अपनी नदियों को साफ रखने की जंग में ये एक सबसे बड़ी जीत है।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 411.9 एफएम 1490 एएम रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: वेलकम बैक टू एवरीबॉडी। एंजॉय किया आपने गाना, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। एंड कैसे चल रही है आपकी वेनसडे की ये शाम? आप स्ट्रेस तो नहीं ले रहे हो ना, एंड खुश तो हो ना, मुस्कुरा रहे तो हो ना? क्योंकि मेरा हमेशा ये सवाल रहता है आपसे कि मेरे लिसनर्स जो है वो हमेशा मुस्कुराने चाहिए, मुस्कुराते रहने चाहिए, क्योंकि मुस्कुराने की कोई कीमत नहीं होती है और हंसी ये एकमात्र ऐसा अस्त्र है जिसकी वजह से आपके सारी जो चिंताएं हैं वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है। एंड किसी रिलेटिव्स को जलाने के लिए आपकी एक प्यारी सी मुस्कान ही काफ़ी है ताकि वो जले उनको लगे कि आप खुश है और ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपकी तरक्की हो रही है, तो रिश्तेदारों में भी ये बात फैलने देते हैं, एंजॉय करते हैं अगला एक गाना एंड चिंता नहीं करने का।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का।

बाकी एवरीबॉडी एंजॉय किया आपने गाना एंड इसके अलावा आज ही नॉर्थ कैरोलिना शिक्षा बोर्ड और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर हमारे राज्य के युवाओं की मानसिक स्थिति और स्कूलों से उनकी लगातार अनुपस्थिति को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला सालाना डेटा जारी किया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बच्चों में एंजाइटी और डिप्रेशन काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से वे स्कूल मिस कर रहे हैं। प्रशासन ने सभी माता पिता और अभिभावकों से अपील की है कि वे शाम को कम से कम काम से लौटने के बाद आधा घंटा अपने बच्चों के साथ बिताए, उन्हें समझे, उन्हें सोचे, उनसे बातें करें और उनकी मानसिक स्थिति तनाव को समझे। तो भाइयों, खबरें तो और भी है, लेकिन मंडे ट्यूसडे की इस थकान को मिटाने और आपके मूड को एकदम फ्रेश करने के लिए चलिए सुनते हैं ये अगला गाना, बने रहिएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का।

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। रात के लगभग 8 बज चुके हैं आपके बुधवार की इस बोरिंग शाम में। एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स का जबरदस्त तड़का लगाने के लिए मैं हाजिर हूँ। सिनेमा और माया नगरी मुंबई की हर छोटी बड़ी अंदरूनी गपशप पर, नई फिल्मों के ट्रेलर्स और आपके पसंदीदा स्टार्स की लाइफ स्टाइल से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट के लिए आपने ट्यून इन किया है रेडियो नायरा पर। आप सुन रहे हैं निर्वाणा नाइट्स। 7 से 10 हमारा ये शो चलता है। एंड कैसे चल रही है आपकी वेनसडे की शाम? वेनसडे कोई चीट डे तो बना नहीं दिया आप लोगों ने क्योंकि सुनने में आया है कि सैटरडे संडे इतनी कैलोरीज आप लोगों ने इनटेक कर रखी है और उनसे भी आपका मन भरा नहीं है, तो आप वेनसडे को ही वीकेंड मान के चल रहे हो ऐसा नहीं करना है। कैलोरी अगर आप इनटेक कर रहे हो तो कैलोरीज को बर्न करना भी जरूरी है।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM।

to WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.